ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

रकाबत तो इसी से, तस्खीर है मकसूद तिजारत तो इसी से, खाली है सदाकत से सियासत तो इसी से, कमज़ोर का घर होता है गारत तो इसी से, अक़वाम में मखलूक खुदा बढ़ती है इससे, कौमियत इस्लाम की जड़ कटती है इससे।

खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं।

Welcome back after this beautiful song. Welcome back after the hit of the hour. Sunrise Radio 103.2 FM. आप सुन रहे हैं right now. मेरा नाम है अभी और आज सुबह मैं आपके साथ रहूंगा. Welcome to this beautiful start of the weekend. काफी सारे beautiful songs मैं सिर्फ आपके लिए play करने वाला हूँ, आपके लिए dedicate करने वाला हूँ. So stay tuned with me.

0: सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायका तुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दस ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Desperate Scouse Wives comes to St George's Hall on Thursday, 4th of June. Also in the Bradford district, Vintage Trains return to the Keighley and Worth Valley Railway on 6th and 7th of June. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, and in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, is at the Victoria Theatre on 6th and 7th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena on 6th and 7th of June. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford from 4th to 6th of June. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral on the 5th of June. In Derby, Osnabrück Day takes over the city centre on the 6th of June, launching Derby's 50-50 celebrations. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, opens at Milton Keynes Theatre from the 8th of June. And finally, in West London, An Ideal Husband continues at the Lyric Hammersmith until the 6th of June. And that's your Sunrise Radio event diary,

वेलकम बैक आफ्टर द क्लासिक फ्लैशबैक। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि इन गानों को ना कोई भी नहीं बीट कर सकता, इसीलिए कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग यार, काफी एंजॉय किया मैंने और आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। Well, right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news और the ब्यूटीफुल गानों का सिलसिला चलता रहेगा। So stay tuned with me. I'll see you on the other side.

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, ब्रैडफोर्ड 7230300।
4: 24 hours a day.
5: It's a classic hit. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after yet another beautiful song on Sunrise Radio 103.2 FM. मेरा नाम है अभी and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूँगा. मतलब Sunrise Radio आप काफी सारे medium के through भी सुन सकते हैं. I hope आपको पता है. Well, DAB के जरिए आप सुन सकते हैं in Manchester. At the same time दुनिया के किसी भी कोने में आपने सिर्फ हमारा app download करना है and then there you go. Internet के जरिए आप कहीं भी सुन सकते हैं. और हमारी वेबसाइट है ना, सो www.sunrisevideo.fm पे लॉगिन कीजिएगा. सारे अपडेट्स, अपकमिंग इवेंट्स, सब कुछ आप वहाँ पे देख सकते हैं. एट द सेम टाइम रेडियो का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं. सो कीप दैट इन माइंड एंड द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

93.2 FM आप सुन रहे हैं राइट नाउ। इस गाने को अपने पसंद की होगा ऐसी मैं आशा करता हूँ। मेरा नाम है अभी एंड ऑफकोर्स 11 बजे तक आपके साथ रहूँगा और इस आवर में भी पूरी कोशिश करूँगा कि आपका मनोरंजन किया जाएगा, अच्छे से गाने आपके लिए मैं प्ले करूँ। तो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन सनराइज रेडियो 103.2 FM।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.

Once again, welcome back after yet another beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. आशा करता हूँ कि इस वीकेंड की शुरुआत आप काफ़ी enjoy कर रहे हैं. मतलब रिलैक्स भी करना चाहिए, रेस्ट भी करना चाहिए, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम वीकडेज में नहीं कर सकते, काम के टाइम भी नहीं कर सकते. सो आई थिंक एक लिस्ट अगर हम बनाते हैं ना, छोटी छोटी बातें हो सकती हैं, छोटे छोटे काम हो सकते हैं, अगर उन कामों को एक स्मॉल स्पेन ऑफ टाइम में अगर हम फिनिश करते हैं ना, तो पूरे हफ्ते के लिए आई थिंक हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं. Just a thought. And of course, the next song is specially dedicated to you.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Desperate Scouse Wives comes to St George's Hall on Thursday, 4th of June. Also in the Bradford district, Vintage Trains return to the Keighley and Worth Valley Railway on 6th and 7th of June. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, and in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, is at the Victoria Theatre on 6th and 7th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena on 6th and 7th of June. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford from 4th to 6th of June. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral on the 5th of June. In Derby, Osnabrück Day takes over the city centre on the 6th of June, launching Derby's 50-50 celebrations. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, opens at Milton Keynes Theatre from the 8th of June. And finally, in West London, An Ideal Husband continues at the Lyric Hammersmith until the 6th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
0: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जानेया ते सारी शॉपिंग करके ले आनेया उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
0: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

Welcome back after the classic flashback only on Sunrise Radio 103.2 FM. Nothing like the golden oldies. But right now, मेरी और आपकी मुलाकात होगी खबरों के उस पार, which is after the news, और तभी इन beautiful गानों का सिलसिला चलता रहेगा. कहीं ना आप जाएगा. I'll see you on the other side of this hour. Stay tuned.

इस आवर के तीसरे घंटे में आपका स्वागत है एंड वेलकम बैक आफ्टर द हिट ऑफ द आवर. व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ. ऑफ कोर्स मेरा नाम है अभी और आज 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. दिस इज द सेकंड लास्ट आवर ऑफ माय शो. एंजॉय कीजिएगा इस वीकेंड की शुरुआत को, इस सुबह की शुरुआत को और सनराइज रेडियो पर प्ले हो रहे हैं इन गानों को. द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशली डेडिकेटेड टू यू.

0: हसन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Desperate Scouse Wives comes to St George's Hall on Thursday, 4th of June. Also in the Bradford district, Vintage Trains return to the Keighley and Worth Valley Railway on 6th and 7th of June. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, and in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, is at the Victoria Theatre on 6th and 7th of June. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo takes place at the First Direct Bank Arena on 6th and 7th of June. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford from 4th to 6th of June. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral on the 5th of June. In Derby, Osnabrück Day takes over the city centre on the 6th of June, launching Derby's 50-50 celebrations. In Milton Keynes, Operation Mincemeat, a new musical, opens at Milton Keynes Theatre from the 8th of June. And finally, in West London, An Ideal Husband continues at the Lyric Hammersmith until the 6th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

Welcome back after this beautiful song only on Sunrise Radio 103.2 FM. काफी मधुर गाना था यार, I just loved it. Only on Sunrise Radio 103.2 FM पर आप सुन रहे हैं इन हसीन गानों को. मेरा नाम है Abby and of course 11 बजे तक मैं आपके साथ रहूंगा. अगला गाना सिर्फ आपके लिए है, dedicated.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लो नफ्सिन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
3: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

शो के आखिरी घंटे में आपका स्वागत है सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। ऑफ कोर्स आप सुन रहे हैं राइट नाउ हिट ऑफ द आवर के बाद आपका है स्वागत वापस इस शो पर। मेरा नाम है अभी, दिस इज द लास्ट आवर ऑफ दिस शो। कहीं ना जाइएगा, काफी सारा ब्यूटीफुल म्यूजिक आएगा इस आवर में भी। द नेक्स्ट सॉन्ग इज स्पेशल डेडिकेटेड टू यू।

0: नफ्सेन ज़ायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग सनराइज रेडियो 103.2 एफएम आप सुन रहे हैं राइट नाउ। जस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग है, मुझे भी बहुत पसंद आ गया। मतलब ऐसे गाने होते हैं कि सबको कभी कभी पसंद नहीं आते हैं, पर यू नो यू जस्ट स्टार्टेड फॉलिंग फॉर दिस सॉन्ग, सो दिस वॉज वन फॉर मी। और इसी नोट पर अगला गाना सिर्फ आपके लिए डेडिकेट किया।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
3: 24 hours a day, Sunrise Radio. It's a classic hit. Flashback as we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

वेलकम बैक टू द क्लासिक फ्लैशबैक वॉली और सनराइज रेडियो 103.2 एफएम। मेरा नाम है अभी और आज इस सुबह 7 बजे से मैं आपके साथ था। काफी मजा आ गया मुझे और मैं आशा करता हूँ कि आपको भी काफी मजा आ गया इन गानों को सुनकर। वेल राइट नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ योर फैमिली योर लव्ड वंस और मेरी और आपकी मुलाकात होगी हमारे अगले शो पर। टिल देन अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों को अपने फैमिली मेम्बर्स का ख्याल रखिएगा, उनका हाल चाल पूछिएगा। गुड बाय।

0: हजारों दुआओं मोहब्बतों चाहतों और खुशियों के लाजवाल खजाना की ख्वाहिश के साथ नाही चट्ठा आपकी खिदमत में ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं जी सामीन, आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम एंड 103.2 एफएम पर अक्रॉस द वेस्ट यॉर्कशायर। डेप पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, कीतली में, इल्कली में, स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स में और मैनचेस्टर में, ईस्ट लंकाशायर में, जिसमें आता है ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन एंड एक्रिंगटन एंड मिल्टन केन्स। और सून, वेरी वेरी सून हम लॉन्च होने वाले हैं डार्बी में। जनाब अगर आप नहीं सुन सकते हैं किसी भी इस डेप पर या एफएम पर, तो आप हमें सुन सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर पर, ऑनलाइन जी वेबसाइट पर www.sunriseradio.fm या फिर www.sunriseradio पर जी सामिन। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं हूं नाही चट्ठा। मेरा ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे 11 to 2 होता है और इस प्रोग्राम में हम अच्छी सी बातें करेंगे, कुछ शायरी होगी, कुछ बातें होंगी, आपकी टेलीफोन कॉल्स होंगी और मेनली ट्रैक्स होंगे, ब्यूटीफुल ट्रैक्स, लवली ट्रैक्स, अच्छे अच्छे से गीत होंगे, मौसम के मुताबिक होंगे और हम ये ज़िंदगी के 3 घंटे एक दूसरे के साथ हवा के दोष पर एक कनेक्शन के साथ हंसी खुशी गुजार देंगे। उम्मीद है आप मेरा साथ देंगे और 11 से 2 तक हम मिलकर इन आवर्स को इन्जॉय करेंगे। सबसे पहले तो मैं बढ़ूंगी अपने हिट ऑफ द आवर गीत की जानिब। हिट ऑफ द आवर गीत सुनते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी हाँ, भीगी भीगी रुत में हम तुम चलते हैं। बारिश हो रही है, भीगी भीगी रुत है, बूंदें मोतियों की तरह गिर रही हैं। जो लोग बारिश को एंजॉय करते हैं उनके लिए फेवरेट होता है गर्मियों में जब बारिश होती है, बहुत खूबसूरत लगता है, सब एंजॉय करते हैं, अच्छा लगता है। तो सोचा कि इस सावर में क्यों ना आपको सारे बारिश के रिमझिम रिमझिम गीत सुनाए जाएं। क्या ख्याल है? अच्छा आइडिया है ना। तो सामीन, प्रोग्राम का आगाज़ तो हो चुका है, आपने हिट ऑफ द आवर भी सुन लिया है। वाजिद भाई, बहुत शुक्रिया आपकी टेलीफोन कॉल का। लास्ट सैटरडे मैं नहीं आ सकी थी, कोई पर्सनल रीजंस थे, आई हैड टू गो समवेयर, तो इस वजह से। तो उसके लिए माजरत। आई होप कि जो मेरा प्रोग्राम पसंद करते हैं उन्होंने ज़रूर मुझे मिस किया होगा, जैसे वाजिद भाई ने कहा उन्होंने मिस किया। और आपने कहा कि आपको पंजाबी शायरी सुनाई जाए, तो स्पेशली वाजिद भाई, लेकिन बाकी तुम भी सारे सुन सकते हो जी। चंगी जी, पंजाबी शायरी, पंजाबी पोइट्री है जी, वो हर एक ने सुनिया होएगा। पप्पू यार तंग ना कर, पाकिस्तान में रिक्शे के पीछे भी लिखा आता है, जोक्स में भी आता है, पप्पू यार तंग ना कर। तो उहदे उत्ते किसी ने बहुत अच्छी पोइट्री की थी है। क्या है कि पप्पू सानू तंग ना कर तू, पप्पू सानू तंग ना कर तू, बड़े जरूरी काम लगे हैं। पप्पू सानू तंग ना कर तू, बड़े जरूरी काम लगे हैं, सोचे पया की करिए, सोची पया की करिए, रोटी शोटी खा बैठे हैं, लस्सी शस्सी पी बैठे हैं, रोटी शोटी खा बैठे हैं, लस्सी शस्सी पी बैठे हैं, हुक्के दा कश लगा बैठे हैं, पूंज पांज के अंदरों बाहरों भांडे भी खड़का बैठे हैं, हुन सोची पया की करिए। वेख लिया ने सब अखबारां, सबे वरके थुल बैठे हैं, पढ़ बैठे हैं सारे अखर, सारे हर्फ सुना बैठे हैं, सोची पया हुन की करिए। कैसे कैसे असले बन गए, वड्डे वड्डे मसले बन गए, वड्डे शहर वसा बैठे हैं, सारा चैन गवा बैठे हैं, हुण सोची पए हैं हुण की करिए। रिज़्क सियासत इश्क कविता, कुछ भी खालिस रहन न दिता, सारी खेड वंजा बैठे हैं, दुध विच सिरका पा बैठे हैं, सोची पए हैं हुण की करिए। जी करदा सी वोटां पाइए, मार्शल ला तो जान छड़ाइए, वोटां छोटां पा बैठे हैं, ए जमहूरी रोला रप्पा, कई साल हंडा बैठे हैं, सोची पए हैं हुण की करिए। सौदा कोई पुछदा नहीं, कोई रस्ता सुझदा नहीं, रस्ते दे विच आ बैठे हैं, सोची पया हुण की करिए, सोची पया हुण की करिए, पप्पू सानू तंग ना कर तू, बड़े जरूरी काम लगे हैं, सोची पया हुण की करिए। जनाब, ये तो थी पंजाबी की शायरी आप सबके लिए, सोची पया हुण की करिए, कम शम सारे मुका बैठे हैं। तो अब हम कर लेते हैं कि टाइम चेक, और टाइम चेक के बाद हमारा होगा कमर्शियल ब्रेक, और कमर्शियल ब्रेक के बाद जनाब आप एक और अच्छा सा गीत सुनेंगे, भीगा भीगा सा गीत।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त स्टूडियो की घड़ियों पे हुआ चाहते हैं 11:15, जी हाँ 11:15, यानी कि 11:15, यानी कि 11:15। बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब, और इस ब्रेक के बाद आपसे होती है दोबारा मुलाकात, हमारे साथ रहिएगा।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल बेलव्यू रेजिडेंसेस लग्जरी कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
0: सनराइज रेडियो। सामीन एडवर्ट ब्रेक तो हमने सुन ली और वापस आ गए। अब सुनते हैं क्या खूबसूरत गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। भीगी भीगी रुत है। एंजॉय कीजिएगा।

भीगे भीगे रुत है, उमंगों पे निखार है, क्या ही खूबसूरत गीत। और आपने सुना, एंजॉय किया। इसमें है तो मोहम्मद रफ़ी का गीत था, लेकिन वो लेडी की आवाज़ सिर्फ इतनी थी, और वो जो सांसें लेने की आवाज़ थी, बस वही लेडी की आवाज़ थी, और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में

ये गीत था, बहुत खूबसूरत गीत था। एक और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत सुनते हैं, मेरे ख्याल है इसमें सांसें नहीं होएंगी। ये दूसरा वाला गीत होगा, बहुत ही खूबसूरत गीत है। और ये क्या मज़ा आता है, बारिश हो रही हो, हम लेडीज़ के लिए तो आइडियल सा एक सिनेरियो बनता है। मैं सोचती हूँ कि बारिश हो रही हो बाहर और मैं किचन में बर्तन धो रही हूँ और पीछे से ये वाला गीत लगा और मैं सफाई कर रही हूँ, एक तरफ खाना बनने के लिए चूल्हे पे चढ़ाया हो और खुशबू खाने की भी आ रही है और पानी की भी आवाज़ आ रही है, बाहर बारिश हो रही है और बैकग्राउंड में ये गाना लगा है। वैसे कितना अनरोमांटिक किस्म का सिनेरियो है लेकिन मज़ा बड़ा आता है। सही गल है।

रिमझिम के गीत सावन गाए, भीगी भीगी रातों में। दिन में भी वैसे गा सकता है, सिर्फ रातों की जरूरत नहीं है, लेकिन गाना रातों के बारे में या कोई बात नहीं, लेकिन एक और गाना बनना चाहिए, रिमझिम के गीत सावन गाए भीगे भीगे दिनों में, है ना, दिनों का भी होना चाहिए। बहुत अच्छा लगा तारिक जुल्फी जी, आपकी टेलीफोन कॉल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया, आपने गीतों की तारीफ की, प्रोग्राम की तारीफ की। और चौधरी मुजफ्फर जी, आपसे बात करके भी हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा है कि अगला जो गीत होगा हमारा, जो हमारी कमर्शियल ब्रेक और इवेंट्स डायरी के बाद होगा, वो आप दोनों के नाम और तारिक जुल्फी जी, आपने कहा कि आपके तमाम दोस्तों के नाम आपकी तरफ से। आहा, क्या कमाल गीत है, इन्जॉय करेंगे आप आई एम श्योर। लेकिन दिस टाइम मैं सुन के बता रही हूँ, पहली बार की तरह नहीं। तो ये गीत बहुत खूबसूरत होगा आपके लिए, जो कि किशोर कुमार की आवाज़ में है, और वो भी भीगा भीगा रिमझिम रिमझिम, गीला गीला बारिश बारिश का गीत है। आई होप यू विल एंजॉय दैट। अभी हम बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक की जानेब। कमर्शियल ब्रेक के बाद इवेंट स्टारी, एंड इवेंट स्टारी के बाद होगा जी ये वाला खूबसूरत सा गीत तारिक जुल्फी साहिब की जानिब से, उनके तमाम दोस्तों के नाम और चौधरी मुजफ्फर साहिब जी आपके लिए और आपके तमाम दोस्तों के लिए। मुझे लग रहा है आप लोगों के दोस्त भी कॉमन है सबके लिए, ऐश करो कि याद करोगे। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रैडफोर्ड 723030।
4: Here's what's happening over the coming days. First, in Bradford, The Bodyguard arrives at the Alhambra Theatre, bringing the smash hit musical featuring the songs of Whitney Houston to the city across multiple performances. Also in the Bradford district, the Keighley and Worth Valley Railway Vintage Train Weekend returns, with heritage steam and diesel services running through Bronte Country. Over in Calderdale, Analogue 10 by the Royal Photographic Society continues at Dean Clough, showcasing contemporary analogue photography from artists across the UK. And still in Halifax, Creative Dance Centre, performing through the decades, takes to the stage at the Victoria Theatre, celebrating music and dance through the generations. In Leeds, the Leeds International Tattoo Expo 2026 arrives at the First Direct Bank Arena, bringing together tattoo artists, exhibitors, and live demonstrations from across the country. In Manchester, Northern Ballet's Gentleman Jack is at the Lowry in Salford, inspired by the remarkable life of Halifax landowner Anne Lister. Over in East Lancashire, Friendship First, an interfaith conversation, takes place at Blackburn Cathedral, bringing together voices from different faith communities.

रिमझिम गिरे सावन, क्या ही खूबसूरत गीत। और आप इस गीत के दौरान बात हुई जनाब आसिफ रियासत भाई से, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और वफा जी, आपसे बात करके भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और ख़ास तौर पे ख़वातीन जिन्होंने मेरा वो जो मैंने सिनेरियो बयान किया था किचन में काम करने का और बैकग्राउंड में ऐसे गानों का, तो उन्होंने कहा कि मैं भी उससे रिलेट करती हूँ, मुझे भी यही बात याद आ गई और हम इस बात पे खूब हंसे। की करिए जी, रोइए ना तो हंसिए ही उनकी कर सकने तो ऐसे ही होता है कि हंसी लें तो बेहतर है, रोने से बेहतर है कि आप हंसी लें। लेकिन अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला दुआ है कि आप सब के घरों को हंसता बसता रखे, घर भरे हों, जब भी खाने पक रहे होते हैं, जब भी पांडे धोए जा रहे होते हैं, बर्तन धोए जा रहे होते हैं और घर की रौनकें होती हैं, ये सब कुछ रौनकें कैसे कहते हैं ना, जिया नाल रौनका होंदियाँ ने, तो घर के जी सलामत रहें, खुश रहें, तो अच्छी बात है और इसी से घर की रौनकें बहाल रहें। तो समीन, जो हम अगला गीत पेश करेंगे वो होगा हमारा फ्लैशबैक गीत। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल है फ्लैशबैक गीत से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि क्या है कि हम आपको एक और गीत सुना देते हैं और फिर उसके बाद फ्लैशबैक की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो जी, ये गीत हम करते हैं जनाब आसिफ रियासत साहिब की जानिब से, उनके तमाम दोस्तों के नाम। जैसा कि मैंने कहा था, तुसी सारे दोस्त एक ही हो, तो ऐसा है कि तमाम दोस्तों के नाम आसिफ रियासत साहिब की तरफ से गीत। उम्मीद है जैसा कि आपने बाकी गीत पसंद किए, ये भी ज़रूर पसंद करेंगे। इन्जॉय कीजिएगा।

0: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: जी समीन, हम ऐसे कर लेते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं, गीत ख़त्म हो चुका है तो क्यों ना टाइम ही शायम ही चेक कर लिए. वो मैंने जैसे कि पहले आपको शायरी सुनाई थी, हुन की करिए, तो हुन गाना ख़त्म हो गया वै तो एडवर्ट विच थोड़ा टाइम है तो फिर यही कर लेते हैं कि टाइम ही चेक कर लेते हैं, हुन की करिए होर की करिए. तो जनाब हमारी स्टूडियो की घड़ियों पे टाइम हुआ जा रहा है 11:41, जो कि 42 मिनट कुछ ही सेकंड में होने वाले हैं, यानी कि 42 मिनट्स पास्ट 11 होने वाले हैं. इस वक्त 41 मिनट्स पास्ट 11 हो चुके हैं. तो अब इसके बाद होगा हमारा हमारी कमर्शियल ब्रेक. कमर्शियल ब्रेक के बाद होगा जनाब हमारा फ्लैशबैक गीत, और फ्लैशबैक के गीत के बाद आपसे दोबारा मुलाकात होगी. तो उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे, सुनते रहेंगे सनराइज रेडियो, एंजॉय कीजिएगा. और जो हमारे गीत हैं, जाहिर बात है कि जिस तरह हम आपके लिए कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद के गीत ढूंढ ढूंढ कर लगाएं, आपकी जो फरमाइशें हैं वो मैं कोशिश करती हूं कि आपको लगा दी जाएं. लेकिन मैं अभी ढूंढ रही हूं दो लोगों की, बल्कि वाजिद भाई की नूर जहां के पुराने गीत की फरमाइश है, वफा आपकी भी गीत की फरमाइश है. आधा तो मैंने आपको वैसे ही गा के सुना दिया था और बाकी आपको मैं सुनाऊँगी, और फिर आपसे इंशाल्लाह दोबारा ऐसा मैं करूँगी कि जो आप लोगों के गीत हैं वो मैं फरमाइशें पूरी करती रहूँ. इस वक्त हम बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक की जानिब. कमर्शियल ब्रेक के बाद फ्लैशबैक गीत, हमारे साथ रहिएगा.

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274 491 442।
3: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

वेलकम बैक सामीन, कि आपने गीत सुना और हमारी बात हुई नदीम भाई से, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। हीरा खान जी, आपकी कॉल मिस हो गई हमसे, प्लीज़ आप दोबारा कीजिएगा तो मैं ज़रूर कॉल अटेंड कर लूँगी, माफ़ी चाहती हूँ। ऐसा करते हैं कि नदीम भाई की फरमाइश पर ये खूबसूरत सा गीत सुनते हैं, मिलकर एंजॉय करते हैं।

0: This Wednesday, the Lotto jackpot must be won.
1: Must be won?
0: Yes. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules apply. 18 plus. Sunrise Radio.
2: Sunrise Radio. वेलकम बैक सरेन, हम प्रोग्राम के दूसरे आवर में यानी कि दूसरे घंटे में दाखिल हो चुके हैं। ये कंग्रेचुलेशंस। ऐसा है कि आप सुन रहे हैं सनराइज रेडियो 100.6 एफएम पर एंड 103.2 एफएम पर और डेप पर आप सुन रहे हैं कीतली में, इल्कली में, ब्रेडफोर्ड में ऑफ कोर्स और स्किप्टन में, लीड्स में, हैलिफैक्स, मैनचेस्टर और ईस्ट लंकाशायर यानी कि ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन एंड एकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में। जनाब हम डर्बी में जाने वाले हैं बहुत ही जल्दी और वहाँ पे हम लॉन्च करने वाले हैं वेरी वेरी सून। लेकिन अगर आप इन सब पे नहीं सुन सकते तो आप सुन सकते हैं सनराइज रेडियो की नशरियात 24/7 एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वेबसाइट्स www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio। जी हाँ, और एक दफ़ा फिर से याद दिलाती चलूँ कि ये प्रोग्राम एवरी सैटरडे होता है। मैं हूँ आपकी मेज़बान नाही चट्ठा, मेरा और आपका साथ एवरी सैटरडे 11 से 2 तक रहता है, जिसमें हम अच्छी सी बातें करते हैं, कुछ शायरी होती है, कुछ गीत होते हैं और कुछ आपकी बातें, टेलीफोन कॉल्स, हम एक टॉपिक को डिस्कस करते हैं जो आज का टॉपिक होगा। मुझे ख्याल आया एक सेइंग का, मैंने कहीं पढ़ा क्या कि जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो जब सबसे पहले हम छतरी से छुटकारा हासिल करते हैं, यानी कि जिसने हमें बचाया होता है, जैसे ही हमारा मुश्किल वक्त ख़त्म होता है हम सबसे पहले उससे छुटकारा हासिल करते हैं। तो क्या ख्याल है, बुरे वक्त के साथियों को अच्छे वक्त में नहीं भूलना चाहिए। अगर किसी ने आपकी मदद की हो बुरे वक्त में या मुश्किल वक्त में औखे पारे वेले, तो उन्हें भूलना नहीं चाहिए। यहाँ पे भूलने की क्या बात है, यहाँ पे उल्टा दुश्मन भी बन जाते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे, अपने अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, कोई अच्छी बात हो तो ज़रूर कहिएगा, लेकिन ये सब होगा नेक्स्ट आवर में, अभी नहीं, अभी इस घंटे में चुप करके गाने सुनो। जी हाँ, अच्छे अच्छे से गीत होंगे। हम बढ़ते हैं हम अपने हिट ऑफ द आवर की जानिब। और वाजिद भाई, आपने बोला था नूर जहाँ का गीत, तो हम हिट ऑफ द आवर पे आपको नूर जहाँ का गीत सुनाते हैं जी। जिस दिन सुफिया दिल ले गए, हाँ जी वही दिन याद कीजिएगा। बढ़ते हैं इस गीत की जानिब।
3: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
4: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

वाह वाह वाह, क्या ही खूबसूरत गीत था। जिस दिन से पिया दिल ले गए दुख दे गए। हाँ जी, दिल ले जाते हैं तो दुख दे जाते हैं, क्या कह सकते हैं। गमो दुख के ये इशारे तुम न समझोगे, गमो दुख के ये इशारे तुम न समझोगे। जो दिन हमने तुम्हारे बिन गुजारे तुम न समझोगे। तुम्हें कैसे बताएं तुम हमारे वास्ते क्या हो, तुम्हें कैसे बताएं तुम हमारे वास्ते क्या हो। समंदर की कहानी में किनारे तुम न समझोगे। बस इतना जान लो एक शख्स से हमने मोहब्बत की, बस इतना जान लो एक शख्स से हमने मोहब्बत की। हमारे टूटने का खेल प्यारे तुम न समझोगे। हजारों मुश्किलों से खेल कर भी जीतने वाले, हजारों मुश्किलों से खेल कर भी जीतने वाले। ये आखिर किस जगह पर आके हारे हाय तुम ना समझोगे, है ना, तुम ना समझोगे। जी हाँ, ये शायरी तमाम सुनने वालों के नाम तो सी नहीं समझोगे, है ना। जिस समझोगे तो मनु दस देना। तो ऐसा करते हैं कि खालिद जी, आपकी टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, थैंक्स फॉर लाइकिंग द शो। और हम अगला गीत जो है वो जी आपके नाम करते हैं। बहुत प्यारा गीत है, सावन के हवाले से है, लेकिन इसके बाद एक और गीत मैंने नूरजहां का ही चूज़ किया। बहुत मज़ा आ रहा था पिछले गीत का, फिर मैंने कहा चलो एक और सुनने आ, लेकिन इस गीत के बाद होगा। ये खालिद जी खास तौर पर आपके लिए, बाकी सब भी सुन सकते हैं, नाराज ना हो जाना फिर मेरे को।

0: सावन का मौसम था, पूनम की रात थी, क्या खूबसूरत गीत था और हमारी सुमित्रा जी से बात थी। हाँ जी सुमित्रा जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। इस गीत के दौरान आप मिल्टन कीन्स से फ़ोन कर रही थी और आप प्रोग्राम को सराह रही थी, आपको प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, हमारी बातें अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट दैट। आपने सबको दुआ दी और बहुत बहुत गुड वर्ड्स बोले, थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। तो आपके लिए मैं गीत मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में प्ले करूँगी ठीक ब्रेक के बाद। पहले कर लेते हैं टाइम चेक, क्योंकि वो ओवरड्यू हो गया है। टाइम चेक करेंगे, फिर ब्रेक पर जाएंगे और फिर आपका मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत प्ले करेंगे आपके लिए।
1: Sunrise Radio,

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Looking for your dream home in Bradford?
2: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
1: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
2: Bellevue Residences.
1: Luxury, space and style.
2: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.

वेलकम बैक सामईन, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना और ये मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत आपके लिए प्ले किया गया सुमित्रा जी मिल्टन कीन्स से उनकी फरमाइश पर। और इस दौरान, इस गीत के दौरान हमारी बात हुई बानो जी से भी और एम खान साहब से भी। तो उम्मीद है कि आपने ये गीत पसंद किया होगा, इन्जॉय किया होगा, और मैंने एम खान साहब से भी बात करने और बानो जी से भी बात करने को बहुत इन्जॉय किया। अगला गीत जो होगा वो हमारा होगा नूर जहाँ की आवाज़ में, पंजाबी का गीत है, उम्मीद है आप वो पसंद करेंगे। छोटा सा गीत है और फिर उसके बाद हमारी हो जाएगी कमर्शियल ब्रेक का टाइम। तो ऐसा करते हैं कि बढ़ते हैं इस गीत की जानिब और फिर मिलते हैं इस गीत के बाद। और बानो जी, आपकी फरमाइश पे जो गीत होगा वो मैं जल्द ही प्ले करूँगी इंशाल्लाह।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

नच पंजाबन जी बानो जी तानू पसंद आ गया होगा गीत तुसी क्या सी फड़क दौया गीत सुनायो तो फिर फड़क दौया तानू गीत सुना दिता इबरारुल हक दी आवाज़ च ते चंद अशार भी ने तन दा मास खवाई रखना सौखा नहीं तन दा मास खवाई रखना सौखा नहीं दर्दा नाल बनाई रखना सौखा नहीं अज भी ओदे ना ते अड़ियां करदा है अज भी ओदे ना ते अड़ियां करदा है कमला मन परचाई रखना सौखा नहीं लोका अंदर उठना बैना हसना भी लोका अंदर उठना बैना हसना भी अपनी पीड़ लुकाई रखना सौखा नहीं की ख्याल है बिल्कुल सौखा नहीं हमारी इस दौरान गीत के दौरान बात हुई एक बहुत ही प्यारी बहन से उनका नाम उन्होंने खुफिया रखा है हाँ जी सीक्रेट हैं जी हमारे तो बहुत बहुत अच्छी बातें हुई और बहुत अच्छा लगा बहुत अरसे बाद बहन से बात हुई है और बहुत मज़ा आया उनसे बात करके तो ऐसा है कि हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की जानिब जो कि मोहम्मद रफ़ी की ही आवाज़ में है एक रास्ता दो राही आहा आहा एंजॉय कीजिएगा एक बार फिर कह लेती हूँ आहा आहा

0: रस।
1: आहा आहा मैं वेट कर रही थी मैं किस टाइम बोलूं आहा आहा। तो ऐसा है जनाब, इस आहा आहा गाने के बाद हमारा टाइम हुआ चाहता है टाइम चेक करने का।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त हुआ चाहते हैं 12:43 यानी कि 12:43। इसके साथ ही हम बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद जनाब होगा हमारा फ्लैशबैक गीत, पुराना गीत। सुनिएगा, एंजॉय कीजिएगा।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
3: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

ये मेरा प्रेम पत्र पढ़ के तुम नाराज ना होना। हाय हाय, क्या ही बातें हैं जी। एक तो प्रेम पत्र मिल रहा है, ऊपर से नाराज है, गलती चंगी नहीं है। तो कितने ये पुराने जमाने की बात है, होनते मसले ही होरने, मसले ही खराब ने, की करिए। तो पंजाबी की एक और शायरी आपके समातों की नज़र करूँगी। मुश्किल जावे टलते रोइए, मुश्किल जावे टलते रोइए, निकले कोई हल ते रोइए, एक दुख होंदा रोवी लेंदे, एक दुख होंदा रोवी लेंदे, हुण केड़ी केड़ी गल ते रोइए दसो। ओथे वेख के लोग हसनगे, ओथे वेख के लोग हसनगे, एथे चट को खल के रोइए, साड़ी मौत ते सजना कहना, साड़ी मौत ते सजना कहना, रोंदी होवे गल ते रोइए। साड़ी मौत ते सजना कहना है, रोंदी होवे गल ते रोइए, तेरे वर्गे होर बथेरे है, तेरे वर्गे होर बथेरे, की हुन चिट्टी खल ते रोइए। तेरे वर्गे होर बतेरे, की हुण चिट्टी खलते रोइए, थां थां उत्ते रोण दा फायदा, थां थां उत्ते रोण दा फायदा, इक्को बूहा मल के रोइए। है ना, इक्को बूहा जिहड़ा रब दी ज़ात दा बूहा है। थां थां उत्ते रोण दा फायदा, इक्को बूहा मल के रोइए। जनाब, इस पंजाबी इशारी के बाद उर्दू का गीत, क्या बात है जी, लता मंगेशकर की आवाज़ में, सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा।

0: जी जनाब, आपने ये खूबसूरत गीत सुना, एक प्यार का नगमा है, बहुत ही खूबसूरत। इसको हमेशा इंजॉय किया गया, पुराना गीत है लेकिन जब भी सुना इसको इंजॉय किया। जब भी हमें ये गीत कहीं पे भी मिल जाता है, और आई डोंट मिस इट, अगर मुझे नज़र आ जाए तो मैं ज़रूर ज़रूर इसको प्ले करती हूँ। इस दौरान आयशा जी, आपकी टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, आपने बहुत अच्छी पोइट्री सुनाई और बहुत अच्छा लगा ये भी आपकी पोइट्री को भी सुन के। तो अब ऐसा है समीन कि अब हमें हम ले नहीं पाएंगे कुछ और गीत को, बिकॉज टाइम थोड़ा रह गया है और हमें जाना है वापस अपनी कमर्शियल ब्रेक, सॉरी अपनी न्यूज़ ब्रेक की जानिब। तो हम वो कोई और गीत प्ले नहीं कर पाएंगे इस आवर में, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा रह गया है। तो आपको चंद अशआर सुनाती हूँ, और आशा जी आप भी इंजॉय कीजिएगा, बाकी सब लोग भी। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहसन हैं इतने, कुछ और यहाँ हो सकता है। पर जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। जिस लम्हे में तुम जिंदा हो, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। जी हाँ, जो होगा देखा जाएगा। कोई बुरा काम ना करें, लेकिन मुझे इस पोइट्री से बहुत मोटिवेशन मिलती है। जो मेरा दिल चाहता है मैं कर गुजरती हूँ, किसी को नुकसान पहुँचाने की या नेगेटिव मानों में नहीं। जो मेरा दिल चाहता है कहीं जाने का, कुछ खाने का, कुछ करने का, मैं कर गुजरती हूँ। जो होगा देखा जाएगा, क्या ख्याल है? बढ़ते हैं न्यूज़ की जानिब।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
2: The Sky News Centre at 1. Conservative leader Kemi Badenoch's written to the Prime Minister calling for an investigation into the circumstances surrounding the death of Henry Novak. The 18-year-old was falsely accused of racism by the man who stabbed him and was arrested by police as he lay dying. Earlier, US Vice President J.D. Vance called for righteous anger and blamed Henry Novak's murder on migration. HuffPost UK politics editor Kevin Schofield says there'll be a mixed reaction to his comments.
3: I guess it plays well for his domestic audience, which I guess that's what it's aimed at. It will be welcomed, I'm sure, by Nigel Farage and Reform, because it kind of backs up their response to the Henry Novak case, and it's given number 10 an opportunity to kick back at it again. But you just kind of feel sorry for Henry Novak's family.
2: Meanwhile, six more people have been charged with violent disorder after protests. Iran and the US have exchanged more strikes. The US says it shot down four Iranian drones, while Iran says it fired two ballistic missiles at American air bases in Kuwait and Bahrain. Commemorations are underway to mark the 82nd anniversary of the D-Day landings in Normandy. Troops landed on the beaches of northern France on the 6th of June 1944. Philippa Rawlinson is the Director of Remembrance at the Royal British Legion. She's at the Bayeux War Cemetery in France.
4: Here on the 82nd anniversary of D-Day, it was a really poignant moment where we are preparing to welcome veterans, their families and guests to pay tribute to all those that fought for our freedoms that we enjoy today.
2: West Ham co-chairman David Sullivan has left the club with immediate effect. In a statement, he's said he's leaving due to factually incorrect and entirely false decades-old allegations concerning his personal life that are due to be published. Mr. Sullivan denies any illegal conduct and says he's taken the decision to step down in order to avoid disruption to the club. And there's been a drop in the number of people watching the Eurovision Song Contest. This year's show had 131 million viewers, down 35 million from last year. That's the latest.

0: वेलकम बैक सामीन, हम प्रोग्राम के आखिरी आवर में दाखिल हो चुके हैं। एक साथ इकट्ठे बातें करते, गीत सुनते, गाने सुनते, फोन करते और शायरी सुनते, ये हमारे दो घंटे बहुत अच्छे से गुजर चुके हैं और अब हम अपने तीसरे आवर में दाखिल हो चुके हैं। तो समीन, एक दफ़ा फिर से आपको याद दिला दूं कि मैं हूं आपकी मेज़बान नाहिद चट्ठा, मेरा और आपका साथ रहता है 11 से 2 एवरी सैटरडे। आप सुन रही हैं सनराइज़ रेडियो 100.6 एफएम एंड 103.2 एफएम अक्रॉस वेस्ट यॉर्कशायर। डेप पर आप सुन रहे हैं ब्रेडफोर्ड, कीथली, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हैलिफैक्स और मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नली, डार्विन, नेल्सन, एक्रिंगटन और मिल्टन किन्स में, और डार्बी में भी हम जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं। जनाब, अगर आप इन सब पे नहीं सुन पा रहे तो आप सुन सकते हैं एप्पल ऐप स्टोर से या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमारी वेबसाइट www.sunriseradio.fm या फिर www.sunrise.radio को। तो समीन, ये हमारा प्रोग्राम का आखिरी आवर, जैसा कि आप जानते हैं, होता है हमारा डिस्कशन आवर और इसमें हम एक किसी टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स का इंतज़ार रहता है क्योंकि वैसे भी हम बातें करते रहते हैं और शायरी करते हैं, गाने सुनते हैं, गाते हैं, अच्छा टाइम गुजारते हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ज़िंदगी का एक हिस्सा ये भी होता है, ज़रूरी होता है कि हम कुछ सीरियस टॉपिक्स को डिस्कस करें, हम ऐसी बातें करें जो कि हम सब जानते हैं लेकिन हम भूल चुके हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं लेकिन हम उन पर तवज्जो नहीं देते। लेकिन अगर कहीं से कोई बात कानों में पड़ जाए, कोई तहरीर नज़र के आगे से गुजर जाए, तो फिर हमें याद आ जाता है। हमेशा कहा करती हूँ कि हम कौन होते हैं किसी की इस्लाह करने वाले, हम खुद की ही इस्लाह कर लें तो बड़ी बात है। हम जो भी डिस्कशंस करते हैं, हमारे मेहमान, हमारे स्पीकर्स ऑन एयर आते हैं, टॉपिक पे बात करते हैं, तो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी तरफ से हमारा ध्यान ज़िंदगी की अफरा तफरी में, कश्मकश में, मुश्किलों में, जिन चीज़ों की तरफ से हट गया होता है, वो हमें दोबारा याद आ जाती हैं और हम अपने आप से अहद करते हैं कि हम इसमें जो नेगेटिव चीज़ है, हम कोशिश करेंगे कि हम हमारे से वो मुर्तकिब ना हो या हम ना करें उसको। तो आज का समय जो टॉपिक है वो है कि एक मिसाल से शुरू करूंगी उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। वो मिसाल ये है कि जब बारिश ख़त्म हो जाए तो सबसे पहले हम उस छतरी को, उस छाता को या उस अम्ब्रेला को फेंकते हैं जिसने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया होता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जिस चीज़ ने, जिस शख्स ने हमारा साथ दिया हो मुश्किल वक्त में या हम पे एहसान किया हो, हम उसको भूल जाते हैं। समटाइम्स ऐसा भी होता है एहसान के बदले हम उसके साथ बुरा सलूक क्या कर देते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कॉल है कि जिस पर एहसान करो फिर उसके शर से बचो। तो ऐसा क्यों है, हम इंसानों में ऐसी बात क्यों है, हम कुत्तों से भी बदतर क्यों हो जाते हैं कि कुत्ता भी है जब उस पर एहसान किया जाए और वो वफ़ादार रहता है, आप उसको खाना खिलाते हैं, आपके पीछे तो मिलाता है, लेकिन जब हम इंसानों पे एहसान करते हैं, हम अपने जानने वालों पे, अपने दोस्त अहबाब पे और बहुत से ऐसे भी अल्लाह के बंदे दुनिया में मौजूद हैं जो कि किसी को जानते भी नहीं हैं, अगर उसको मुश्किल में देखते हैं तो उस पर एहसान कर देते हैं, उसके लिए आसानी कर देते हैं। और यही एक इंसानियत का सबक है कि हम एहसान करें, हम एक किसी के लिए किसी की मुश्किल को आसान करें, लेकिन जिसकी मुश्किल आसान की जाए और जब वो बेहतर हालात में आए, ना तो वो हमें ना सिर्फ वो हमें पहचानना छोड़ दे बल्कि वो हमारे साथ बुरा सलूक करे, ये कहाँ का इंसाफ है। बल्कि यही बात करने के लिए जा रही थी, हीट ऑफ द आवर लगाना है, लेकिन हम इस बात के दौरान ही हमें कॉल मौसूल हो रही है एम खान भाई की, और वो हम कॉल लेते हैं और फिर ऐसा करते हैं कि उनसे बात करने के दौरान हमें पता चलेगा कि उनका इस बारे में क्या ख्याल है। मैं ये कॉल पिक करती हूँ, हमारे साथ रहिएगा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मोहतरमा, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ऑन एयर हूँ जी। आप एयर
0: जी? आप ऑन एयर हैं।
1: शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत और कम्युनिटी के दिल के दरीचे, जहन और कुलूब को मुनव्वर करने वाला और इसको समझने के लिए शऊर और अकल व फहम और फरासत की ज़रूरत है ताकि इस मौजू को दिल में बिठाया जाए।
0: जी बिल्कुल।
1: ख़ास करके हमारे लीडरों के लिए भी, जो हमारे लीडरों के लिए एटम बम उनके मुंह से निकलता है।
0: जी।
1: इस मौजू से मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को जब फिरौन ने घर से निकाला तो यही आपका मौजू सईदना मूसा अलैहिस्सलाम के सामने फिरौन ने रखा कि तू मेरा एहसान तूने नहीं माना। सईदना मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ऐ फिरौन, ये तेरा एहसान नहीं, तेरे जुल्म की इंतहा है।
0: जी।
1: तो अल्लाह करीम ने फरमाया, जनाब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन से जरा नरमी में बात कीजिएगा ताकि फिरौन के दिल में जबर, गुरूर, तकबर और अना और लड़ाई के लिए फौरन तैयार ना हो जाए, बल्कि ऐसी नरमी से, ऐसी खूबसूरती खूबसूरती के साथ बात कीजिए ताकि फिरौन के दिल में नरमी पैदा हो जाए।
0: जी जी।
1: तो इस जो मौजू है एहसान, इस एहसान का मतलब ये है कि अलिफ जो है ये आदमी को पहली सबक तो पहले देता कि उस अजीम अलिफ अल्लाह ने तुझे ये इंसान इंसान बनाया और फिर इंसान फरमा के फरमाया हमने एक ही, जैसा रब ने फरमाया मैं एक हूँ, ऐसा एक नबी है। फरमाया फिर एहसान अल कुर्बा है, इंसान इंसान एहसान को समझने की कोशिश कर।
0: नहीं, एहसान अल कुर्बा कि अपने जो लोग हैं आपके कुर्बत में हैं उन पर एहसान करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
1: आपके कुर्बत में, जो आपकी मोहब्बत में आपके कबीले के लोग हैं,
0: आप उन पर एहसान करें। जी बिल्कुल।
1: उनका हक बिछाने।
0: जी बिल्कुल।
1: बाज़ दफा ख़वातीन व हज़रात ऐसे होते हैं कि बात करने वाला बाज़ दफा सख्ती से बात करता, फरमाए नहीं नहीं एहसान का ये मतलब नहीं कि तेरी जुबान में जबर, कहार और ऐसा ऐसी चीज पैदा हो कि कुर्बा के दिल टूट जाए, उनके दिल जख्म हो जाए। उनके दिल जख्मी करने से पहले पहले तो अपनी जुबान को, अपनी कलाम को, अपने बोलने को जो ले जा है ले जा, इसको दुरुस्त कर ले। आपने ख्वातीन, आपकी जुबान से यह अगर बात निकलती तो मियां साहब का वो एक टुकड़ा मुझे याद है, निक्का फल कच्चा सोना लगता है।
0: अच्छा।
1: जब बच्चियां बच्चे छोटे होते हैं
0: हाँ
1: तो माँ बाप का दिल लुभाते हैं।
0: जी।
1: फरमाया एहसान से बात करने वाली है, करने वालिया, करने वाले वो जुबान इस्तेमाल कर जो तूने अपने बच्चों के लिए इंतखाब किया कि मैं ये मीठी जुबान बोलूंगा, हम मेरे बच्चे और बच्चियां खुश हो जाएंगे। फरमाया ये तो कुर्बा है, ये इन पर जो इंसान की बातें करेगा इसमें भी जरा नरमी इस्तेमाल कर, मोहब्बत वाली जुबान इस्तेमाल कर, ऐसी जुबान इस्तेमाल कर जिससे फूल और दिल की दुनिया में एक बहार पैदा हो जाए। और मैं साथ साथ ही मुझे याद ना रहे आपका, आपके रेडियो सनराइज के सुनने वाले सुनने वालियां वाले सबका शुक्र गुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआओं की बारिश रखी। उस बारिश ठंड की वजह से अल्लाह ने मुझे काफी फायदा बचाया है।
0: माशाल्लाह।
1: आइंदा भी जितने सुनने वालियां हैं, जितने सुनने वाले हैं, आपने जिक्र और फिक्र में ऐसी दुआओं की बारिश रखी जो किसी के लिए दुआ करता है, अल्लाह करीम उसके हक में दुआ कबूल करता है।
0: बेशक ऐसा ही है।
1: यूसुफ अलैहि सलाम की बात करके मैं आपको खत्म आपकी बात आप तक छोड़ता हूँ। सैयदना ज़लीखा अलैहि सलाम ने अर्ज किया, ऐ सैयदना यूसुफ अलैहि सलाम आपकी मोहब्बत में आपके एहसान के जो नूर की कैफियत मेरे सीने में दाखिल हुई उसकी कैफियत ऐसी है अगर मैं आह मारूं तो ये जो दरख्तों के पत्ते हैं दरख्त भी जल जाए। उस मोहब्बत ने मेरे अंदर ऐसी कैफियत पैदा कर दी है, तो आप सुनने वालों को वही कैफियत पैदा फरमाएं ताकि जैसा सैयदना ज़लीखा अलैहि सलाम ने फरमाया मैं पत्तों को जिंदी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहती बल्कि उनको बाकी रखना चाहती हूँ। तो फरमाया एक वक्त ऐसा आया फरमाया ऐ यूसुफ अलैहि सलाम मैं अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, ऐसी दुआ फरमाएं कि मुझे फिर दोबारा अल्लाह की दुआ की बरकत से जवानी लुटाए और वो जो आपका एहसान मुझ पर हुआ था उसका मैं हक अदा कर सकूँ। तो जो एहसान का हक है वो पुछाने के लिए दिल गुर्दा रूह और जहन और कुलूब को ऐसा सैराब करें कि मीठी जुबान मीठी कलाम से लोगों को दिल सैराब कर दें। सुनने वाले आपके लिए आपके अभाव जदा जिन लोगों ने तरबीत की है जैसे आप हैं, आप लोग कुरान के लिए आउज़ बिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ते हैं लेकिन आपकी मीठी जुबान आपकी वालदा की तरबियत वालिद की तरबियत ऐसी है कि आपके लिए भी आउज़ बिल्ला बिस्मिल्ला पढ़ते हैं और शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमारी कम्यूनिटी में एक खवातीन साहिब इल्म को तूने बेदार किया, उसकी इल्म की कैफियत की वजह से हमारे दिलों को एहसान की कैफियत से दोबारा बाला दोबारा जिंदा कर दिया हमेशा के लिए। अल्लाह इसको बाहर अता फरमाए।
0: बहुत शुक्रिया आम खान जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्ला जी। समीन ये तो एम खान जी थे जो हमारे प्रोग्राम में आए और उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी सी बातें की। हमारे साथ आयशा जी भी मौजूद हैं। आयशा जी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो गीत है एक हिट ऑफ द आवर का भी ड्यू हो गया है क्योंकि एम खान जी की कॉल थी और मैं उसको डिले नहीं करना चाह रही थी और आपसे भी तफसीलन बात होगी जो कि जल्दी में नहीं करना चाहती क्योंकि अभी हमारा ब्रेक का टाइम हुआ चाहता है। ब्रेक के बाद हमारा हिट ऑफ द आवर गीत होगा और उसके बाद आशा जी आपसे बात होगी। आई एम रियली सॉरी, आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ऑन एयर आने के लिए। तो पहले हम करते हैं टाइम चेक और उसके बाद हम बढ़ेंगे कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद हिट ऑफ द आवर गीत सुनकर फिर हम आयशा जी से बात करते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं 1:15 यानी कि 1:15 और हम बढ़ेंगे अब अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के बाद हिट ऑफ द आवर गीत और फिर आपसे दोबारा मुलाकात होती है।
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
5: क्योंकि सोने बिछाई महंगाई में चांदी ले आई।
6: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
7: Sunrise Radio, hit after hit, the hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio, hit of the hour.

0: ये दिल और उनकी निगाहों के साए बहुत ही खूबसूरत, बहुत धीमा, बहुत ही ब्यूटीफुल मेलोडी आपने ये गीत सुना, क्योंकि प्रोग्राम गीतों का ही है। और आयशा जी, आपसे बात हो रही थी, बल्कि आप भी इस टॉपिक पर बात करना चाह रही हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि आयशा जी की कॉल लेते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा जी।
1: वालेकुम सलाम, आप कैसे हैं?
0: मैं ठीक ठाक। मैं आप ऑन एयर है, मैं पहले से ही बता दूं,
1: ठीक है,
0: ताकि मुझे आई लव यू वगैरह कहने लग जाओ तो फिर ऑन एयर चला जाएगा।
1: नहीं नहीं नहीं, नहीं। वैसे मेरी आप बहन है, कह भी सकती हूँ।
0: हाँ, मुझे पता है ना आपकी आदत का, इसीलिए बोला था। आप ऑन एयर हैं जी। आप बताइएगा कि एहसान करने के बारे में आपका क्या, आपके ख्यालात हैं? आपसे पहले जो कॉलर थे, हमारे बहुत बहुत बहुत मोहतरम एम खान भाई, उन्होंने दो पॉइंट्स कहे थे, और इन दो पॉइंट्स के अलावा मैं चाहूँगी कि आप भी कुछ रोशनी डालें। उन्होंने एक पॉइंट तो ये कहा था कि जब आप एहसान कर रहे होते हैं, मज़े की बात उनकी गुफ्तगू में मुझे ये लगी कि उन्होंने दोनों साइड्स की बात को कवर किया। पहले जो एहसान कर रहा होता है, समटाइम्स लोग एहसान करते हैं लेकिन ज़बान के करख्त होते हैं, एहसान भी करते हैं और बुरे तरीके से, और उस किसी का दिल भी दुखाते हैं। और दूसरा उन्होंने कहा कि अपने अकरबा और अपने जानने वालों और अपने करीबी लोगों पर एहसान करो। ये दो बातें उनकी पूरी गुफ्तगू में मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगी। आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगी?

0: आजकल को जो दौर जा रहा है इसमें तो काफी डिफिकल्ट है कुछ कहना, मगर मैं चलो फिर भी अपने ख्यालात जाहिर करूंगी। जैसे आपने मौला अली का कौल पहले सुनाया है कि मौला अली का कौल है जिससे एहसान करो उसकी शर से बचो।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर छोटा मोटा एहसान है कोई किसी का लेन देन या पैसे या वैसे कुछ छोटा मोटे हजार जो भी अगर आप अच्छा काम करते हैं वो दूसरे के लिए तो एहसान ही होता है।
1: बिल्कुल।
0: उसको तो मेरे ख्याल में भूल ही जाना चाहिए और बार बार उसे एहसास ही नहीं दिलाना चाहिए कि मैंने तुम्हारे साथ ये किया है, क्योंकि जब हम बार बार ये एहसास दिलाते हैं उसके दिल में ना चाहते हुए भी फिर आपके बारे में मनफी बातें शुरू हो जाती हैं कि मैंने एहसान लिया है कि मैंने मुसीबत जी ली है। तो मीनिंग उसका एहसान का जो दर्जा होता है या इंसान की वो एहसास की रूह होती है एहसान करने की वो खत्म हो जाती है।
1: यानी कि एहसान करके आपको जितलाना नहीं चाहिए बार बार कि मैंने तुम पे एहसान किया, मैंने तुम पे एहसान किया, देख या ना उस टाइम तू किन्ने औखा सी, मैं तेनु हेल्प की थी, ऑल दैट
0: स्टफ। या 10 लोगों के हाँ मैंने इसके साथ ये इसको रकम दी है या ये किया या इस मुश्किल से निकाला है, तो वो फिर दुश्मनी का बीज कहीं ना कहीं
1: जाहिर है। फिर जिसने एहसान किया होता है उसके दिल में फिर मैल आ जाता है। बिल्कुल
0: मैल आ जाता है फिर। हाँ वो खुद से अगर आप उसे अच्छे तरीके से जैसे आप बुजुर्ग पहले आए थे नरमी से बात करते हैं कि ठीक है मैं तेरी मदद करूंगा जितनी मेरी हो सकती है, तो तेरे मेरे दरमियान बात है, उस पर चीज को भूल जाओ ठीक है, तो वो उसके दिल में वो एहतराम भी रहेगा और उस एहसान का एहसास भी रहेगा। हम लोगों में ये बात है कि हम एहसान करके 10-15 लोगों में अपनी मशहूर भी करवाते हैं,
1: लेकिन आयशा ये
0: चाहते हुए भी दूसरे बंदे तक बात पहुंच जाती है।
1: हाँ लेकिन आयशा जब ये सॉरी आपकी बात काटने हो रही है, ये बात तो है अगर मशहूरी ना भी कराएं, अगर मैंने किसी पे एहसान किया और अगर उस एहसान को उस शख्स ने भूल के मुझसे बुरा सलूक किया तो फिर मुझे क्या करना चाहिए?
0: फिर दूसरी दफा उस बात इंसान को नजरअंदाज करो। मेरे ख्याल में मीनी के मौला अली का जैसे आपने कॉल बताया है पहले कि पहले भी इस तरह के लोग थे, इसीलिए तो मौला अली ने ये फरमान किया था।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: पहले इस तरह के लोग हो सकता है हमसे बदतर हूँ,
1: एहसान करो और फिर उसके शर से बचो जिस पे एहसान किया।
0: हाँ उसकी शर में नहीं कि उसकी दुश्मनी से बचो।
1: बिल्कुल।
0: तो ये है ना कि अगर लेन देन का हिसाब है तो उसका तो अल्लाह ताला ने साफ कह दिया कि अगर मोटी रकम किसी को दे रहे हैं तो फिर लेते हुए फिर वो दुश्मनी बन जाती है, उसका तो अल्लाह ताला ने साफ कहा है कि पेपरों पे लिख लिख बात कर लो ठीक है, वो तो होगी बड़ी छोटी 5-10 का है, वो अगर आपने दिया है किसी को तो वो अगर नहीं वापस कर रहा या भूल गया है तो फिर आंदा उसको देने की जरूरत नहीं है, नजरअंदाज कर।
1: आंदा कुछ बचा होगा तो देंगे ना वो पहले ही। बंदा अपना जाहिर अगर कोई दरमियाने टाइप के लोग अपनी दे देते हैं और कहते हैं कि ठीक है तुम अपनी मुश्किल वक्त गुजार लो और बाद में मुझे वापस कर देना, और फिर उससे वो वापस अपने ही पैसे लेना मुसीबत बन जाता है।
0: तो ये अगर बड़ी रकम है तो वो तो मिनी अल्लाह ताला ने इस मंदिर को तरीका भी सिखाया है कि आप लिख लिखा भी कर दो। आज का दौर है कि चलो टेक्नोलॉजी है, चलो रिकॉर्ड कर लो कि हम तू ले रहा है और मैं दे रहा हूँ, तो अगर ताकि भूल ना जाए वो, अगर भूल जाए तो उसे एक दो थोड़ा याद करवाओ। अगर आप समझ रहे हो कि ये देने के हक में नहीं है तो दुश्मनी पालने से उसे नजरअंदाज कर दो। अगर बड़ी रकम है तो वो तो बंदा नहीं माफ कर सकता, मगर छोटी मोटी 5-10 की तरह तो एहसान कई तरीके के एहसान है। जिस तरह हम पाकिस्तान से रिश्ते हम लोग करके लेकर आते हैं तो हमारा थोड़ा मुझ अपना भी वो सोच रहे होते हैं कि चलो पाकिस्तान के बच्चे होंगे हमारे साथ निभाएंगे, हमारे इधर के मीनिंग जो बेवकूफ बच्चे उनके साथ वो गुजारा करके हमारे बच्चों की जिंदगी सुधर जाएगी, हम लोगों के लिए फायदा मंद होगा। मगर जब हम ले आते हैं तो फिर उस एहसान को हम ऐसे गुलाम ट्रीट करते हैं, फिर वो एहसान एहसान नहीं रहता। जब वो बच्चे की शादियां नाकाम हो जाती हैं फिर कहते हैं हमने तो नेकी की थी, एहसान किया था, नेकी उल्टी पड़ गई है, ये काम खत्म हो गया है। तो ये चीजें एहसान तो डिफरेंट तरीके के, छोटे से बड़े तक भी एहसान है, मगर ये है कि कुछ लोगों की एहसान करने वाले की भी गलती होती है, कुछ करवाने वाले की भी।
1: बिल्कुल यही बात है, दोनों तरफ से होता है। समटाइम जो एहसान करता है वो फिर बाद में उसके बदले बड़ा उससे अपना बेनिफिट चाहता है कि मुझे इससे कुछ बड़ा फ़ायदा मिले, इसके मुश्किल वक्त पे मैंने एहसान किया था, लाइक हर तरह के। और साथ में आपने ये बात भी बहुत अच्छी की कि एहसान बहुत मुख्तलिफ किस्मों के होते हैं, किसी को किसी की बीमारी में उसका हाल पूछ लेना वो भी एहसान के ज़ुमरे में आता है। ये कर्ज होते हैं दुनिया को हमारे, और अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जब हमने कुछ अच्छा किया था किसी के साथ बुरे वक्त में, तो वो बंदा वो बात याद रखे, और जब वो याद नहीं रखता और आपसे बुरा ट्रीट करता है, फिर आपको ज़्यादा तकलीफ़ होती है। लेकिन एक और बात कही जाती है, ये बहुत इंग्लिश स्कॉलर्स ने भी कही है, इस्लामिक स्कॉलर्स ने भी कही है, कि वाकई वो कहते हैं ना, एहसान कर दरिया में डाल, यानी कि आप किस करके भूल जाओ, ये वाली बात आपकी बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब वो बंदा आपके सामने आ जाए और उल्टा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, फिर
0: नुकसान वो तभी पहुंचाना शुरू करता है जब उसको, पहले तो वो एहसान उस वक्त एहसान रहता है जब तक सब कुछ ठीक होता है, नुकसान वो उसी वक्त बचाने की कोशिश करता है जब उसको लगता है कि उसकी फीलिंग कहीं ना कहीं
1: है,
0: तो फिर वो सोचता है कि वो दुश्मनी पे उतर आता है। समटाइम हम ये भी करते हैं 10-12 लोगों पे, हाँ ये मुश्किल में था हमने से निकाला है, हम अपनी नेकी को बढ़ावा दे रहे होते हैं, गद्दार हकीकत उसकी पर्दादारी नहीं रख रहे, उसके पर्दाफाश कर रहे होते हैं,
1: फिर
0: मुझे गुस्सा आता है कि मेरे पहचान करके इसने 10-15 लोगों को मुझे मशहूर क्यों किया।
1: हाँ, ये फिर उसकी वो रिबेलियंट हो जाता है, फिर उसको लगता है कि मैं अब, वो फिर गुस्से में आ जाता है, और फिर ये उसका तरीका कार होता है कि किसी बंदे के
0: तो
1: साथ
0: अपने एहसान, जो जिस पे एहसान होता है उसे याद रहता है, ये जरूरी नहीं है कि उसे एहसास दिलाया जाए कि तुम याद रखो, उसे हमेशा अच्छे बुरे वक्त में हमेशा उसे याद रहेगा कि फलां मुश्किल वक्त में इस बंदे ने मुझे निकाला था। ये उसे एहसास दिलाने की
1: चीज भूलती नहीं है,
0: आपने किया फिर आप भूल जाओ।
1: हाँ, और सब एक और बात है आशा जी, कि एक्सपेक्टेशंस ना हो, जब आप करो तो आप एक्सपेक्टेशंस ना रखो। सबसे ज़्यादा इंसान को जो दुख देती हैं चीज़ें, वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जब आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी से लगाई हुई उम्मीदें वो पूरी नहीं होती, तो फिर आप आपको दुख होता है।
0: ये बड़ी हम किसी के साथ एहसान कर रहे हैं तो हमारे साथ कोई कर रहा होगा, ये रूल में जिंदगी चल रही है, उसके साथ कोई और कर रहा, ये नहीं है कि हम किसी के साथ कर रहे हैं, हमारे साथ कोई और कर रहा, उसके साथ कोई और कर रहा होगा,
1: ऐसे तो दुनिया चलती है। बिल्कुल,
0: ये है कि जब किसी के साथ एहसान कर लेते हैं, या तो उसे हम अपना गुलाम समझना शुरू कर देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: या फिर उसे हम बैटरी ट्रीट करते हैं, या फिर उसे बार बार जिता जिता के मैंने तुम्हारे इस काम आया था, तुम्हारा ये काम किया, तुम्हारा ये काम किया ना, करते करते भी उसके दिल में नफरत का फूल बीज बो के
1: पानी दे के बीज को खाद डाल देते हैं, और फिर बाद में रोते हैं।
0: फिर आखिरकार वो तंग आके ना, या तो फिर वो जवाब देगा, या फिर वो दुश्मनी भी उतर आएगा।
1: हाँ, नहीं, आपने बहुत बहुत अच्छी बातें की, थैंक यू सो मच, और आपकी ये सभी बातें बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट थी, और मेरा ख्याल है कि हमारे बाकी लिसनर्स ने भी इन बातों से इत्तफाक किया होगा, जैसे मैं इत्तफाक कर रही हूँ।
0: अगर मैं आखिरी बात करना चाहती हूँ, आपकी बात सोच रही हूँ, अगर एहसान करना है तो फिर उसमें अल्लाह की रजा समझो, कि अल्लाह ताला ने मुझे मुंतखब किया इसकी मदद के लिए, तो ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये अल्लाह के वास्ते कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मुझे इसका अजर दे। उस बंदे से तवक्कुल ना रखो, फिर अल्लाह से
1: तवक्कुल रखो। बहुत खूबसूरत बातें आपने की। आई एम सॉरी, मैं थोड़ी सी जल्दी में इसलिए हूँ कि हमारा ब्रेक का टाइम को भी कुछ मिनट्स ऊपर हो गए हैं, और मुझे वो टाइम पे ब्रेक लेनी थी। थैंक यू सो मच, मुझे आपकी सभी बातें बहुत अच्छी लगी, और मुझे उम्मीद है कि तमाम लिसनर्स भी इस बात से इत्तफाक करते होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन एयर, और अपने कीमती ख्यालात का इजहार करने का बहुत शुक्रिया। और भी इसके अलावा कोई इस बारे में बात करना चाहे तो आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं 01274-306666 पर। थैंक यू आयशा जी, जीते रहिए, खुश रहिए।
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ, जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे, जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल।

0: जी समीन, इस वक्त हमारे साथ हमारे एक और कॉलर मौजूद हैं जी, शकील साहब। वो भी इस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम शकील साहब।
1: जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
0: कैसी तबीयत है आपकी?
1: अल्लाह की मेहरबानी, शुक्र है। आपकी दुआएं हैं, आप सुनाए कैसे हैं?
0: सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का और आप इस बात के बारे में बात करने के लिए। आप क्या कहना चाहेंगे एहसान के बारे में कि जब हम जी कहिए।
1: सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: एहसान, नेकी, किसी से नेकी करना, मदद करना किसी की, किसी को मुसीबत से निकालना
0: जी,
1: ये एहसान होता है और एहसान अल्लाह का हुक्म है। जब हम नेकी करते हैं किसी के साथ, उसका बदला अल्लाह ताला देते हैं
0: जी।
1: तो नेकी वही भी इंसान कर सकता है जिसके दिल में दूसरों का दर्द हो, जिसका जमीर जिंदा हो
0: जी।
1: जब हम किसी पर एहसान करते हैं तो ये तो आपको पता है कि एहसान जताना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका बदला अल्लाह ताला ने देना होता है। हम जब एहसान किसी पर कर रहे होते हैं ना, ये हम उस पर एहसान नहीं कर रहे होते, हम अपनी नेकी में इजाफा कर रहे होते हैं, ये याद रखें। तो जब आप एहसान जताएंगे तो वो नेकी बर्बाद हो जाती है,
0: जाया हो जाती है।
1: बल्कि अपनी आँख, हम अपनी आँख पर सवार होते हैं जब किसी के साथ नेकी करते हैं, तो उसका बदला अल्लाह ताला देते हैं, ये याद रखें
0: जी।
1: तो अगर कोई एहसान फरामोश हो जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, एहसान का बदला अल्लाह ताला खुद देते हैं। आप एहसान करते जाएं, दूसरों को, दूसरे लोग जो है उनको जेह में ना आए कि वो झगड़ा करेंगे या ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्योंकि हमने तो अपना आप संवारना है ना, हमने नेकी करनी, ये हमारा काम है, दूसरे का काम से हमें कोई ताल्लुक नहीं है।
0: अच्छा,
1: तो असल वजह जो थी है ना, जो इंसान फरमोश हो जाते हैं, देखें इंसान इंसान का दुश्मन नहीं, इंसान का दुश्मन असल है तो वो इब्लीस है, शैतान है। ये नहीं चाहता कि दो इंसानों में आपस में मोहब्बत पैदा हो
0: जी।
1: ये झगड़े जो भी होते हैं ना, जो भी चीजें घर में झगड़ा है, इधर उधर होता है, ये इब्लीस है जो हमारे जहन में डाल देता है, ये देखो इस तुमसे ये कर दिया, इसने ये कर दिया। तो अगर हम ये समझें कि ये बुराई, जो बुराई पर उकसा रहा है, ये शैतान है, तो फिर हम उसका जो एहसान करते हैं ना, फिर हम खामोश रह जाएंगे, हम अपना एहसान फिर खत्म कर लेंगे अगर हम झगड़ा करना शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है, ये इंसान इंसानों को लड़ाने के लिए शैतान हमारे जहन में ये गलत चीजें डाल देता है, ताकि दो इंसान आपस में मोहब्बत ना कर सकें, ये चीज देखनी होती है। तो अगर हम अपने आप को, अगर हम दूसरों पर नहीं तो अपने आप पर एहसान कर रहे होते हैं, नेकी करने के, जो नेकी हमने करनी है या अपने लिए करनी।
0: बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है।
1: देखिए कोई देखो धोखा आपको देते, हम किसी को धोखा देते हैं ना, वो हम धोखा नहीं होता, वो हम अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं। जो भी हमने काम करना है अपने लिए करना है, तो इसलिए ये हमारा दुश्मन समझो, अपना जो दुश्मन है ना, ये इब्लीस है, ये बुरे काम पे हमें उकसाता है। तो ये एहसान करते जाए, आप नेकी करते जाए, अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा। ये मत सोचे कि दूसरा झगड़ा करेगा तो आप खामोश हो जाए, आपको तो बदला अल्लाह ताला ने देना है, नेकी आपने करनी है, एहसान करना है
0: जी।
1: तो ये आप जाए क्यों करते हैं, आप उनको, आप अपना काम करें, दूसरों को अपने काम पे छोड़ दे।
0: बहुत खूबसूरत बात है, बहुत खूबसूरत बात है।
1: अपने आप हमको कर रहे हैं और इनको खराब करने के लिए ये इब्लीस जो है ना, ये बना हुआ है। तो ये समझे कि ये उसका काम है बदी करना और हमारा काम है नेकी करना, एहसान।
0: यही लड़ाई है, यही तो जंग है, असल काम, असल जंग तो यही है।
1: या असल में हमारा दुश्मन जो है उसको समझे आप।
0: हाँ, कि दुश्मन असल में है कौन, हम इंसानों को दुश्मन बना के बैठे हैं, लेकिन जो असल दुश्मन है हम उसका साथ देने लग जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप।
1: तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप नेकी करते जाएं, आप आप अपना एहसान ना बर्बाद करें।
0: बहुत खूबसूरत पैगाम।
1: अपना काम करने दे, आप अपना काम, आप के अगर जमीर जिंदा है तो कोई आपको कुछ नहीं कर सकता।
0: बेशक, बहुत बहुत ही खूबसूरत पैगाम, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच शकील साहब। ओके, बहुत शुक्रिया जी। जी सामीन, शकील साहब की कॉल, बहुत ही खूबसूरत बातें उन्होंने की और बहुत ही प्यारा पैगाम दिया कि आप काम, आप नेकी करते जाएं और जिस इसका अजर खुदा ने देना है। आप जब किसी पे एहसान करते हैं तो आप दूसरे पे एहसान नहीं कर रहे, आप अपने पे एहसान कर रहे हैं, क्योंकि उसका अजर आपको रब ताला की ज़ात देगी। समय इसके साथ ही हमारा टाइम हुआ चाहता है अजान ब्रेक का, और इसके बाद आपसे मुलाकात होती है। हमारे साथ रहिएगा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: जी समीन, अभी आपने अजान सुनी और इसके साथ ही हमारा टाइम बताने का वक्त हुआ जाता है और उसके बाद हमारी कमर्शियल ब्रेक होगी और कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे फ्लैशबैक गीत के साथ। और अगर कोई बात करना चाहे एहसान के बारे में तो आप दोबारा हमें फ़ोन कर सकते हैं 01274306666 पर। तो पहले कर लेते हैं जी टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: इस वक्त हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं कि हुआ चाहते हैं ठीक 1:45, यानी कि 1:45 यानी कि 1:45, पौने दो बज गए हैं जनाब। अब हम बढ़ते हैं अपने कमर्शियल ब्रेक की जानिब। कमर्शियल ब्रेक के फौरन बाद होता है हमारा नॉर्मली फ्लैशबैक गीत, लेकिन इस आवर में मैं गीतों का जो टाइम होता है वो मैं कर देती हूँ, अगर ऊपर नीचे हो भी जाए तो मैं इम्पोर्टेंस देती हूँ आपकी टेलीफोन कॉल्स को, क्योंकि डिस्कशंस करना जितना इम्पोर्टेंट है हमें हम भूल चुके हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अच्छी बातें करना। और हमारे जो कॉलर्स आते हैं इतनी इतनी अच्छी बातें करते हैं कि हम सब लिसनर्स के लिए वो मशाले राह बनती हैं हम सब के लिए। सो कोई भी अच्छी बात करता है और उसकी बात कितने हज़ारों लोगों के कानों में पड़ती है, एक अच्छी बात वो भी सदका जारिया होता है। और अच्छी बात किसी के कानों में पड़ना ये भी आपकी नेकियों को बढ़ाता है। अगर आप हमें फ़ोन करना चाहें और एहसान के बारे में बात करना चाहें, किसी बंदे एहसान नहीं, किसी का नाम एहसान नहीं, किसी अगर आप किसी एक शख्स पे एहसान करते हैं तो, क्योंकि नाम भी होते हैं ना एहसान, तो जिनके नाम एहसान है उनसे माजरत के साथ, आपके बारे में बात नहीं कर रहे जी, हम बात कर रहे हैं किसी पे एहसान करने की। बढ़ते हैं कमर्शियल ब्रेक की जानिब, हमारे साथ रहिएगा।
2: Looking for your dream home in Bradford?
3: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6, and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
3: Bellevue Residences.
2: Luxury, space, and style.
3: Call 01274-288-252 today to arrange your viewing.
4: Kullu nafsin zaiqatul maut.
5: Muslim Funeral Service mein kafan dafan phoolon ka intizam islami shariat ke ain mutabik ghusl e mayit ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke sath banwane ke liye bhi Muslim Funeral Service ka naam yaad rakhe. Muslim Funeral Service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030, that's Bradford 723030.
6: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD94QU. Call 01274-488-935.

0: मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। मैंने सोचा कि बरसात के बारिश के अच्छे अच्छे से गीत लगाए खुशी वाले, लेकिन खुशी के साथ गमी भी तो है। कुछ ऐसे भी हमारे लिसनर्स हैं जिनको सैड सॉन्ग्स पसंद हैं, तो पहले तो मैं बिल्कुल भी सैड सॉन्ग नहीं लगाया करती थी अपने प्रोग्राम में, कोई भी प्ले नहीं किया करती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा एक दो कर देना चाहिए, बेचारी दुखी आत्माएँ खुश हो जाएंगी। तो ऐसा है कि इस गीत के दौरान हमारी बहुत ही अच्छी एक कॉलर हैं, हमारी लिसनर हैं वफा जी, उनसे बात हुई। वफा ने बहुत अच्छे पॉइंट्स बताए, और मैं वैसे तो मैं इनकरेज करती हूँ अपने लिसनर्स को और अपने कॉलर्स को कि वो ऑन एयर आके अपनी अच्छी बात करें, ताकि उनकी ज़बानी उनके अल्फाज से वो बात सबके कानों तक पहुँचे। लेकिन आई स्टिल डू रिस्पेक्ट वो ख़वातीन जो ऑन एयर बात नहीं करना चाहती ड्यू टू सम रीजंस, कुछ वजूहात की बिना पर वो बात ऑन एयर नहीं करना चाहती हैं, ताकि वो नहीं चाहती कि उनकी आवाज़ सब लोग सुने, तो वो फिर अपना पैगाम दे देती हैं, तो वो पैगाम फिर मैं आप तक पहुंचा देती हूं। तो वफा जी ने बहुत ही खूबसूरत बातें की। सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही, ये उनकी तरफ से पैगाम है और मैं उनके पॉइंट्स लिख रही थी जब वो मुझसे बात कर रही थी। तो पैगाम यह है कि उन्होंने कहा है, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा है कि आजजी बहुत ज़रूरी है। आजजी होनी चाहिए एहसान करने वाले में भी और एहसान लेने वाले में भी, यानी कि दोनों में आजजी का आंसर बहुत ज़रूरी होता है। एक इंसान टूटा हुआ हो, बिखरा हुआ हो और उसको कोई संभाल ले, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ये भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजे होते हैं लोग, क्योंकि जो उसका काम होना है वो अल्लाह ताला ने ही करना है, रब ताला की ज़ात ने ही करना है, लेकिन कोई वसीला बन जाता है। तो जब कोई वसीला बन जाए तो जिसने एहसान लिया है उसको कभी भी ये भूलना नहीं चाहिए, और जिसने किया है उसको उसमें मैं नहीं लानी चाहिए। अब वफा जी ने मैं पे कहा कि दोनों में ये मैं ख़त्म होनी चाहिए। जब मैं आ जाती है कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो फिर बात बिगड़ जाती है। आखिरी बात उन्होंने बहुत प्यारी की, वो ये की कि जो अच्छे लोग होते हैं, जो नस्ली लोग होते हैं, जो अच्छे ख़ानदानी लोग होते हैं, वो नमक हलाली करते हैं, वो नमक हरामी नहीं करते। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं सख्त अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं कर रही, तो मैंने उन्हें बताया कि आप बात समझाने के लिए जो अल्फाज की ज़रूरत थी आप सिर्फ वही इस्तेमाल कर रही हैं, तो ये ज़्यादा सख्त अल्फाज नहीं है। तो वफा जी, आपकी बात मैंने वर्ड टू वर्ड पहुंचाई कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा एहसान को याद रखते हैं, नमक हलाली करते हैं और नमक हरामी नहीं करते। जी, ये थी वो वाली बातें। प्रोग्राम के अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं। शकील जी ने जो बात की थी, खामोश हो जाओ, अगर कोई आपको इस तरह लगे कि मामला इस तरह से जा रहा है दिल दुखाने की तरफ, तो खामोश हो जाओ। इसके बारे में चंद अशार बोलूँगी और फिर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। हकीकत फरेब हो जाए तो बस खामोश हो जाओ, तखय्युल मुंतशिर कर दे तो बस खामोश हो जाओ, भाती है खुश गुफ्तारी हर एक को लेकिन जब अल्फाज साथ ना दें तो बस खामोश हो जाओ, किसी महफिल में जब हो जाए तुम्हारी कद्र व कीमत कम फिर ना शिकवा करो ना शिकायत बस खामोश हो जाओ, किसी से अहद मत करना बहुत खुशी के आलम में, किसी से अहद मत करना बहुत खुशी के आलम में, वादा शिकनी से बेहतर है कि बस खामोश हो जाओ, नहीं चलती कोई दलील कम अक्ल व अहमक लोगों पर, बहस करने से अच्छा है कि बस खामोश हो जाओ, जिस सच से किसी की ज़िंदगी तल्ख हो जाए ऐसा सच भी ना बोलो बस खामोश हो जाओ, अगर तुम जान जाओ अपनों के मुनाफिक रवैयों को मगर ना रोक सको इनको तो बस खामोश हो जाओ। जी हाँ समीन, ये छोटा सा पैगाम है और ये शायर मुझे मालूम नहीं है किन की ये शायरी है, लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने की। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे अगर ज़िंदगी रही तो। खुदा हाफिज़, रब रखा, बाय बाय।
1: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day. This is Sunrise Radio.
2: From the Sky News Centre at 2, six more people have been charged with violent disorder in Southampton after protests over the murder of Henry Novak. The 18-year-old was falsely accused of racism by the man who stabbed him and was arrested by police as he lay dying. Co-owner David Sullivan has stepped down from West Ham with immediate effect. He says he's left the club having been made aware of the impending publication of serious historic allegations. Phoebe Southworth has more on what he said in a statement.
3: Factually incorrect and entirely false decades-old allegations are due to be published. He doesn't go into more detail about what they are. And then in his statement, he also goes into a little bit about his feelings towards West Ham, the club, as you said, a very difficult time for them as well.
2: Mr. Sullivan has denied any illegal conduct. Ukrainian drones have targeted St. Petersburg in an attack Russia's calling unprecedented. There have been explosions as the city hosts the final day of the country's annual economic forum. Veterans, schoolchildren and pipers have been part of commemorations to honour the 82nd anniversary of the D-Day landings. Nearly 160,000 Allied troops rushed onto the beaches of Normandy, while more than 4,000 personnel died. US Defence Secretary Pete Hegseth says they made the ultimate sacrifice.
4: Fueled by an unwavering love of country and the men beside them, they pushed forward. They chose to face death rather than surrender or quit. And as they fought, inch by bloody inch, the Atlantic Wall crumbled.
2: Ollie Robinson has struck again as England's cricketers chase victory on day three of their first test with New Zealand. The tourists a short time ago were on 53 for five, needing another 201 runs to win. And Duffy has announced she's performing at her first concert in more than 15 years. The singer says she'll be hosting a secret intimate gig in London next month. That's the latest. I'm Kat Suave.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
2: ओ जीत्या, वेरी पाजी ते

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहां से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियां।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: Big things are happening at Sunrise Radio.
1: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
0: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
1: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
2: और नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
2: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
2: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
3: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274 491 442।

0: परौंठे शुरूंठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परौंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: Big things are happening at Sunrise Radio.
2: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
1: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
2: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio. We'll be right back.

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: ओ नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274-491-442।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Big things are happening at Sunrise Radio.
3: We're already broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes. And now we're getting ready to launch in the Midlands, with Sunrise Radio coming soon to Derby.
2: And that's not all. Get ready for the launch of Sunrise Radio Gold.
3: Plus, with exciting launch offers now available across the network, there's never been a better time to advertise your business, product, brand or service with Sunrise Radio. Stay connected for all the latest updates at www.sunrise.radio.
4: नाना जी कहते मैं बहुत शरारती करता हूँ। तो क्या शरारती बच्चे बड़े होके कुछ नहीं कर सकते? क्या मैं पीछे रह जाऊंगा?
5: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।

0: Looking for your dream home in Bradford?
1: Introducing Bellevue Residences, a stunning collection of 4, 6 and 8 bedroom homes. Step inside beautifully fully furnished interiors, finished to a high standard with spacious living areas and fully carpeted rooms designed for family living.
0: Secure electronic gated parking and located in the heart of the Bradford community, close to everything you need.
1: Bellevue Residences.
0: Luxury, space and style.
1: Call 01274 288 252 today to arrange your viewing.
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रैडफोर्ड में? पेश है बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतों ते मिल जाएगा और गोश्त भी थोए लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपरस्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में? पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274288252 पर कॉल करें।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-2522 पर कॉल करें।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच आज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दिया गल्लां खूब होइयां, बड़े अरसे दे दिल घबराए हुए सन, तको तकी अफजल अख खुल गई, जाम कौसर दे लबा नाल

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायका तुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-3030 ब्रेडफोर्ड 7230-3030।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230-3030 ब्रेडफोर्ड 7230-3030।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: वाह वाह वाह
1: चुप
2: हो जाओ।

साड़ी दुनिया के तमाम पंजाबियों नूं अपने वालों सस्री अकाल कह रहा हाँ, कबूल करो इस खुशी दे मौके ते जिथे एडे जश्न मनाए जा रहे ने अज इंडी सगु वास्ते उस दी एक खूबसूरत पेशकश दे विच जो मेरा सब तो फेवरेट गीत है बाबियां दे चल चलिए

0: रेजिडेंसेस, 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल, बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज ले जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: कोई परोंठे शुरूंठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
2: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतों ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
1: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
2: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274-644-46।
3: ਕੱਪੂਰ ਨੇ ਚੌਣ ਕੋ